इनिटिना तरीते क्या जिनाप्रे खोया ही सुटिलेबे सी एमसीडीएम केयाली के तनुई अकु मिलारी क्या मार्चनी क्या रिपी हो निडानी डिपुआ मुफसिलो प्री उमुरिया ज्यादा से निलों डिपुन तथ्य पानी तबुई तत्रे